आपे मिले आया ही गुर सब दिशा लाइए रंगे सह सुभाए सच्चे सच समाया मिल रहे न बिछड़ जाए जो किस करना सो कर रहे वरण करना जाए चिरी बिछुने मेलियन सतगुरु पन्ने पाए आपे कार कराए सी अवरना करना जाए।

गोविंद गुणी निधान अंत न पाया जाए, कथनी बदनी न पाइए हमे विचों जाए। सतगुर मिलिया सत पै रचया वसे मरियाए, भाई रे गुरमुख बुझै कोय, बिन बुझे कर्म कम आवणे जन्म पदार्थ कोय। राव जिन्नी चाख्या तिनी साध पाया, बिन चाख्या परम भुलाए।

सुन मन मेरे भज सतगुरु सरना गुर प्रसाद छुटी है बिख भव जल शब्द गुरु सरना रहाओ त्रै गुण सभा तै दूजा भाव विकार पंडित पड़े बंधन मोह बांधा न बूझै बिखिया प्यार सतगुरु मिलिया त्रिकुटी छुटै चौथे पद मुक्त द्वार गुरते मार्ग पाइए चूकै मूह गुबार शब्द मरे तां उदर है पाए मुख द्वार गुर प्रसाद मिल रहे सच नाम अहंकार तार एओ मनवा अत सबलै छड़े न कितै उपाय दूजे पाए दुख लाए दा बहुती दे सजाए नानक नाम लगे से उबरे होमे शब्द गवाए श्री राग महला तीजा कृपा करे गुर पाई अर नाम दे दृढ़ाए बिन गुर किने न पाए।

में विच जाग बिन सुधा मरदम मैं आवे जाए मन मुख सवदय न जानै जासन पथ गवाए गुरु सेवा नाओ पाई है।

0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru. Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
2: Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru.
3: Bro, are you for real?
2: Uncle G. Why?
0: शुरुआत कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते
1: हैं.
0: Okay, okay, start.
2: Okay, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह.
0: लहरा साहेब हर जग जग भगत उपाया, पैज रखता आया राम.

0: गावन तुनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख तन बिचारे
1: गावन तुनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन से रहे सदा सवारे
0: गावन तुनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवत आदर नाले
1: गावन तुनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुनो साध विचारे
0: गावन तुनो जति सती संतोखी गावन तुनो वीर करारे
1: गावन तुनो पढ़न
0: पढ़न की सर जो जो वेदा नाले गावन तुनो मोनिया मनमोहन सरगम सरगम प्याले
1: गावन तुनो रत्न पाए तेरे अर्षत तीर्थ नाले
0: गावन तुनो जोत महाबसुरा।

0: सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाय
1: हैप्पी होसी जाना जासी रचना जन जाई
0: रंगी रंगी पाटी कर कर जिनसी माया जिन उपाई
1: कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी बढ़ियाई
0: ज्योतिष पावे सोई कर सी फिर हुक्म न करना जाई
1: सो पासा पात साहेब नानक रहन जाई
0: असम हल्ला पहला सुन वड्डा आखे सब

0: हमारे
1: हमारे
0: मुझे उभरिए
1: मरण काल का त्रास निवारिए
0: जो सदा मारे पच्छा
1: राख लो मेरा।

0: नानक सच्चे सार क्या नहीं करते रे।
1: सच्चा नाम मेरा आधारो,
0: साच नाम उदार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया,
1: कसान सुख मनाए वसिया, जिन इच्छा सब पजाइया,
2: सदा करवां के पागल विटोरे।

प्यारी साध संगत जी शाम दे सजे हुए दीवान विच आप संगतां नूं लड़ीवार कथा सरवण करवा रहे सन। सतगुर वाहिगुरु जी सत्कारयोग ज्ञानी कुलदीप सिंह जी दमदमी टकसाल वाले अते नाल नाल कौम दे महान सूरबीर योधे बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्हां दी लौह भिजी दास तनाव संगतां नाल जो सरवण करवा रहे सन। सो भाई साहब जी उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। आओ हुण आप संगतां नूं कीर्तन सरवण करवा रहे हन।

हर एक राग का एक मुख अंग होंदा है, तो उस मुख अंग तो उस राग की पहचान होंदी है। जिवें हर एक आदमी का एक चेहरा होंदा, मुख होंदा है ना, मुख मैंने चेहरा, तो इस तरह राग के भी चेहरे होंदे ने। अगर वह चेहरा बदल जाए तो राग बदल जाता है। कहिंदे नहीं, ये उहदा भरा आ, ये हंस धोनी नहीं, ये शंकर है। तो मुख अंग के नाल ही राग की पहचान होंगी। इहदा मुख अंग चाहे कोई कर्नाटक च गावे, चाहे कोई हिंदुस्तानी पद्धति च गावे, इहदा

पकड़ना है। अंचल गए के साध का तरना ए संसार पार ब्रह्म आराधी है उधरे सब परिवार। तो जिन्हें उदा पल्ला फड़ लिया क्योंकि सारा जग कूड़ है उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वंजाई छोड़े हब किश त्यागी हबे साग कूड़ावे डिठे ये वेख के संसार च सारे रिश्ते नाते सब कूड़ ने ते हुण पौ पल्ला टेंडे लगी आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से ते जड़ा लग जाता वो मां भी धनता दे योग है जिसने उस पुत्र नु जन्म दिता है जो परमात्मा के चरणों में सदा सदा भी वो नाम के रंगिया गया है।

मांगे मोक कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद

बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती दी सहाय वार श्री भगवती दी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हरि कृष्ण त्याई है जिस दिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौने दे आवे ताए सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी नार दा ध्यान करके बोलना जी धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर उदास बेनती है आप जी ने कृपा रहमत की अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाश मनो के दर्शन दीदार बख्शे हैं आप जिया का कोटान कोट धनवाद शुकराना है इस वेले शाम दे दीवान की संपूर्णता परंत आप जिया के पावन स्वरूप के सुख आसन की सेवा हुई है सोहेला साहब की बाणी पढ़ी गई है बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुलजुग की खिमा बख्श नाम के भाने में दिहाड़ा सुखा नाल बतीत होया आई रहन आप दे भाने में बतीत होवे कृपा करो आप जी अपन सेजा ते विराजमान होवो संगतां नूं खुशियां बख्शो अमृत वेले दे जाग ने दर्शन बख्श के निहाल करना सही प्यारे मेल जिना मिले आमदा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

दसना प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बेमहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगेर वाला, प्रभु को सिमरे से पार भुगारी, प्रभु को सिमरे दिन सत बलहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे दिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरे दिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे दिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे दिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा से अंधन जाग, नानक सिमरन पूरे पाग, प्रभु गए सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु गए सिमरन कबू न चूरे, प्रभु गए सिमरन हर गुण बानी, प्रभु गए सिमरन सहज समानी, प्रभु गए सिमरन नेचल आसन, प्रभु गए सिमरन कमल बेगासन, प्रभु गए सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार।

सिमर नहीं चौंकुंठ जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगले आकारा हर सिमरन में आप निरंकार कर कृपा से आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सरोक दीन दर्द दुख पंजना कटगड़नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु सात अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत ना पाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय जय महाभयान दूत जम दलाय तय केवल नाम संग तेरा चल्ला जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उदारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरा हर को नाम कोट पाप पर हर गुरुमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल सृष्टि को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंद ना पर हर का नाम जपत निस तरा अनक माया रंग तिखना बुझावे हर का नाम जपत आघावे जे मार्ग ए जात अकेला तय हर नाम संग होत सुभेला ऐसा नाम मन सदा त्याय नानक गुरमुख परमगत पाइय छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत पार पराही अनक बिघन जाए संगारे हर का नाम तत्काल उधारे अनक जोन जरमे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम।

हर हर देवा, हर हर जन के माल खजीना, हर धन जन को आप रव दीना, हर हर जन के ओट सतानी, हर प्रताप जन अवरना जानी, ओत पोत जन हर सराते, सुन समाध नाम रसमाते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रकट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त भव करे, नानक जन संकेते तरे पार जाते, हर को नाम

अब दुर्त सब नसै संत का संग बटभागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल का शबर ना हुए नानक गुरमुख नाम पावै जन को ए सलोक बहु शास्त्र बहु से मृति पेखे सारब टडोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जापता ज्ञान जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खड़ शास्त्र सेमृत वखियान योग अभ्यास करम धर्म क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान हमें बहु रतना

जय जय प्रसाद हरिपुर सुख बस है सुत प्रात मीत बनता संगसाय जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमला जय प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संसाद बसा दीने हस्त पाम करन नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग्रचना ऐसे दोख मुड अंत व्यापे रान काढ़ प्रव्यापे आद अंत जो राखन हार तस्यों प्रीत न करा गवार

लागे तुल भवान। ब्रह्म ज्ञानी का तीर्ज एक जो वसुदा गऊ खोदा गऊ चंदन लेब। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक जो पावक का सह सुबाह। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला जैसे मैला लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान मानो ए प्रकाश जैसे तरु प्रयाकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतल समान। ब्रह्म ज्ञानी के नाय अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते उच्चा मन अपने सबते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भय नानक जिन प्रभ्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना तमरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब पर माया। ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा ना पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा सामदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

गुरु ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना है। ब्रह्म ज्ञानी की गाते ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंतरा पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी।

सोई करावे इसके हाथे ता सब छिले जोत सभावे सोई करे अन जानत बिख्या मैं रचे जे जानत अपने आ बचे भरमे भूला दै दिसावे नमक माहे चार कुंड फिर आवे।

गुणदास। उपजी प्रीत प्रेमरा चाव मंत्र अंतर एही स्वभाव नेत्र एक दर्श हो मन भिक्षा साज चरण तो हे भगजना के मंत्र बिरला गो भावे संग एक वस्त दिजय कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लाया।

के प्राण आधार। जो जो जपे सोए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीथम, निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्वैकुंठ मुक्त मोह पाए, एक नम खरके गुण गाए, अनक राज भोग बढ़ियाई, हरके नाम की कथा मन पाई। वो भोजन का प्रसंगीत रसना, जपती हर हर नीत, भलि सुकरणी शोभा, तन मन हृदय बसे पूर्ण गुरमंत।

पृष्ठपति जब कार्य कशना दृष्टिता पापन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समात बैर विरोध के संकमाद जब इसका वर्ण चिन्ह जब तब हर सौ कहो किसे व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कांक शोभ ब्रह्म अपन के लावर तीजा दान करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनिता बांध मुगत कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शगत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जो तरह तब कमन ने डर कमन का तो डरे अपन चलता आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस हो जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आप ये चर्जा नान का अपन रूपा आप ये प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पात होता तय बैर मैल कहा हो क्या तो था जय निरंजन निरंकार निर्माण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश जगदीश तय छल छिद्रस लगत कहो कीस जय जो सुरपी जो संग समावत किसे भूकम द्रवताव करण ग्रामन करने हार नान कर देगा राय सुमार जब अपनी शोभा अपन संग मनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत पाए जय सर्व कलापे परवीन तय भेद देव कहा कौचीन जब अपने आप उतार तो सगन अब सगन का विचार जय अपन उचापन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्मराय बिस्माद नान अपनी गत जानो आप जा शल अशेद अभे समाया ऊहा किसे व्यापत माया बसगु अपे आदेश ते गुण का नाही प्रवेश द एक है एक एक भगवंता दय कौन अचंद किस लागे चिंता जे अपने आप आपति आरा तय कौन कथ कौन सुनने हारा बह बेअ तुझ देवचा नानका पसगुआ पे पहुचा

चिंता जाए मिटे अहंकार, तिजन को कोई ना पहुंचन हार। सिर पर ठाडा गुरसूरा, नानक था के कारज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी।

वर्षपदी पूरे गुरुका सुन देश पार ब्रह्म निकट कर पेख सासा सिमरो गोबिंद मन अंदर की उतरा चिंद आस अनित त्यागो तरंग संजना की दूर मन मंग आप छोड़ बेंदी गरहो सासंग अगन सागर तरहो सा

चले सब कोय, चंगा ना और खाए कै जस कीरत जगले। जे तिस नजर ना वही ता बात ना पुछे के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आंगुण दे, तेहा कोई न सुझाई जे तिस गुण कोय करे।

गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़ नरखी सर जुग जुग वेदा नाले।

है प्रसाद। नमो नर्क नाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे।

0: और नानक जी उपाय के लिखना वे धर्म बहा लिया होत है सच्चे ही सच निबड़े चुनवा कड़े जजमा लिया थाउ न पॉइंट को लिया मह काले दो जग चालिया तेरे नायर ते से जुड़ गए हार गए से ढकण वाले लिखना वे धर्म बहा लिया लिखना वे धर्म बहा लिया
1: अब मूर्ख मुग

0: श्लोक भला पहला कड़ी सभी गोपियों पर कन गोपाल गहरे पवन पाणी बसंतर चंद सुचवतार संगली धरती माल तन वर्तन सब जुजा नानक से ज्ञान होनी खाई गया जमकार महला पहला
1: वाइन चेले नचे गुर पैर हलायन फेरन सिर ओड उड़ावा चाटे पाए ली।

0: पौड़ी बिन सतगुर के ने ना पायो, बिन सतगुर के ने ना पाया। सतगुर विच आप रखियन कर प्रगटाक सुनाया।
1: वाहिगुरु
0: सतगुरु मिले सदा मुक्त है दिन विचो मोह चुकाया। उत्तम विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया।

0: चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहार स्वस्थ स्थित दिवान भाग
1: नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक भला पहला
2: लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना प्रवाह लख तप उपर तीर्थ सहज जो बेवा लख सुरतन सगरा उरण में छुटे उपरा लख सुति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुरा जिन करते कार

0: करे मन विभूता क्यों जागे घूर फिर सोता हो पागो बेताना अपना किया कमारा अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पथ गवा
1: फिर ना मैं किस थाए ना पाई रहे।

कृपा करेता साई का कराईसी सो सेवक सेवा करे जिसनों को मनाईसी हुकुम मने हो में प्रमाणता कसमे काम महल पाईसी कसमे भाविशो करे मनुचंदिया सो फल पाईसी धादर के फायदा जायसी ता दर

श्रेष्ठ सकल तारण कौ अब गोर रामदास कौ मिली बढ़ाई सो कहो टल गुर सेविया एहनस सहज सुभाए दर्शन।

जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं।

हाथी आवन जाना तुम ही किया। जिस तू राखै तिस दुख न थिया। तू एको साहेब अवर ना होर, बिनो करे नानक कर जोरा।

आचर्ज कुदरत तेरी बिस्मा रहा तुदे आपे कारण आपे करना हुक्मे जमण हुक्मे मरना नाम तेरा मन तन आधारी नानक दास बखशीस तुम्हारी वडहंस महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे हों क्यों पाई गुरपुरे जेसो खेल खेलाई है बालक रह ना सकै बिन निखीरे मेरे अंतर भुख ना उतरे आ माली जे सौ भोजन मैं नीरे मेरे मन तन प्रेम प्रेम का बिन दर्शन

कै हिरदय वसिया मोख मुगत ते न पाया वडहंस महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया कूड़ बगाड़ काहे नाई है नाता सो परवान सच कमाई है जब साच अंदर हुए साचा ताम साचा पाई है लिखे बाजों सुरत नाही बोल बोल गवाई है जिथे जाए बहिए भला कहिए सुरत शब्द लिखाई है काया कूड़ बगाड़ काहे नाही है ता मैं कहा कहन जा तुझे कहाया अमर तरका नाम मेरे मन पाया नाम मीठा मने लागा दुख डेरा टाया सुख मन में आए वसया जाम तैं फरमाया।

लाहा भगत संसारी बिन भगती सुख ना होई दूजे पत खोई गुरमत नाम उदारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनु एत वापार लाए रतन पदार्थ बन जी है।

मनमुख जन्म गवाया, भिख माया जिन जगत भुलाया, भिख माया जिन जगत भुलाया, साचा नाम ना पाया, मनमुख संता नाल वैर कर, दुख खटे संसारा खोटे।

जय साच शब्द बिचारी अंतर खूहटा अमृत भरिया सबदे काड पिए पनहारी जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम रविजय नानक नाम रते से निर्मल होर हौमै मैल भरी जय पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कू कदे।

के कोई जिन सृष्ट साजी सो कर वेखै तिस जे वड़े अवर ना कोई मनमुख अंदा तप तप खपै बिन शब्द सांत न आई नानक बिन नामे सब कोई भुला माया मुख आई इहो जग जलता देख कै पज पै हर सरनाई राम अरदास करी गुर पूरे आगे।

सेवा लागे सेवड भागे जुग जुग एको जाता जात सत संजम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई नानक जिसनु शब्द बुझाए जो जाए पवे हर शरणाई जो हर मत दे साई उपजै।

मन वसाई सब दुख विसारन हारा वडभागी गुर दर्शन पाया धन धन सतगुरु हमारा उठत बैठत सतगुर सेवै जित सेवै।

जाप हर हर नाम विगसेरा, जाप हर हर नाम कमल परगासे, हर नाम नमंग निद पाई, होमे रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई, हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसै, हौ जीवा सतगुर देख सरसे, कोई आन मिलावे मेरा।

तरे वे तिन के जिन सतगुर पुरख प्राप्त आया। तू वरदाता अंतर जामी मेरी सरदा पूर हर राया। गुर सिख मेल मेरी सरदा पूरी अनदिन राम गुण गाए। जिन सतगुर जिन सत

तेरा प्राण सखाई, तेस बिन घड़ी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुख दाता, गुरमुख अमृत पीवा।

जग माहे सब जग काजल कोठे तन मन दे सुआए गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक तरिए सच नाम सिर साहा पात साहो मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन वे साहो मनमुख भोजन पच मुए गुरमुख तरे अथाहो श्री राग महला पहला कर दूजा मुकाम कर कर बैसना नित चलने की तोख मुकाम तां पर जानिए ज रहे निचल लोक दुनिया कैस मुकामे कर सिदक करनी खर्च बंद हो लाग रहो ना मेरा हो जोगी ता आसन कर बहे मुला बहे मुकाम पंडित वखाने पोथियां सिद्ध बह देव स्थान सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन सेख पीर सलार दर कूच कूचा कर गए अवरे पे चलनहार सुल्तान खान बखाड़िए बिरला तबूजे कोई नानक बखाणे बेनती जल थल मही अल सोए अल्लाह अला का गम कादर करण हार करीम सब दुनी आवन जावनी मुकाम एक रहीम मुकाम तिसनो आखिए जिस सिस न होवी लेख असमान धरती चलसी मुकाम ओही एक दिन रब चले निस सस चले तार का लख पलोए मुकाम ओही एक है नानक सच बगोए महले पहले सतारा अष्टपदियां श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत कीजे बिन गुर भगत न होए आपे आप मिलाए बुझे ता निर्मल होवे कोय हर जियो सच्चा सच्ची बाणी शब्द मिलावा होए पाई रे भगतहीन काही जगाया पूरे गुरु की सेवना कीनी बिरथा जन्म गवाया रहा आपे हर जग जीवन दाता आपे बख्श मिलाए जी जंत ए क्या विचारे क्या कुआक सुनाए गुरमुख आपे दे वड़ियाई आपे सेव कराए देख कुटांब मोह लभाणा चलदिया नाल न जाए सतगुर सेव गुण निधान पाया तिसकी कीम न पाई प्रभ सखा हर जियो मेरा अंते होए सिखाई पई अड़े जग जीवन दाता मनमुख पत गवाई बिन सतगुरु को मग न जाने अंध ठौर न काई हर सुख दाता मन ही वसिया अंत गया पछताई पई अड़े जग जीवन दाता गुरमुख मन वसाया आन दिन भगत करे दिन राती होमे मोह चुकाया जैस्यों राता तैसो हो वै सच्चे सच समाया आपे नदर करे भाओ लाए गुरु साहब दी विचार सतगुर सेवियां सहज उपजे होमे तृष्णा मार हर गुण दाता सद मन वसे सच रख्या उर धार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए नाम निदान हर मन वसे होमे दुख सब जाए सतगुर शब्द सुनाया हो सद बलिहारे जाओ अपने मन चित कहे कहाए बिन गुरु आप न जाए हर जियो भगत वछल सुखदाता कर कृपा मन वसाई नानक शोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड़ियाई श्री राग महला तीजा होमे कर्म कमाम दे जम डंड लगे तिन आय जे सतगुर सेवन से उबरे हर सेती लिवलाए मन रे गुरमुख नाम त्याय तुर पूर्व करते लिखिया तिना गुरमत नाम समाए रहाओ बिन सतगुर प्रतीत न आवी नाम न लागो पाओ सुपन सुख न पावे दुख मै सवै समाय जे हर हर कीचे बहुत लोचिए कीर्तन मेटिया जाए हर का भाणा भगती मनिया से भगत पए दर थाय गुर शब्द दड़ावै रंग स्यों बिन कृपा लिया न जाए जे सो अमृत नीरिय पी बिख फल लागे ताय से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुरु नाल प्यार सतगुर का भाणा कमावदे बिखौमे ताज वेकार मन हट किते ना उपाय मन हट किते उपाय न छूटिए सिमर शास्त्र सुध जाए मिल संगत साधु उभरे गुरु का शब्द कमाए हर का नाम निधान है जिस अंत न पारावार गुरमुख सही सुनदे जिन कृपा करे करतार नानक दाता एक है दूजा उन कोय गुर प्रसादी पाईए कर्म प्राप्त।

जन मरण दुख जाए। पूरे सब सब सोजी होई हर नामे रहे समाए। मन मेरे सतगुरु सिउ चित लाए। निर्मल ना सन तन आवसे मन आए राव। हर जियो रख अपनी सरनाई। ज्यो राखे त्यों रहना। गुर के शब्द जीवित मरे गुरमुख पवजल तरना।

प्रगट प्रताप वरतायो सब लोग करे जयकार जियो मेरे गुणे अवगणना बिचारे आ प्रापना बिरद समारे आ कंठ लाए के रखे ओन लगे ना तत्ती वाओ जियो मैं मन तन प्रभु ते आया जिये छड़िया फल पाया सा पातशाह सिर खसम तू जब नान जीवे नाओ जियो तदापे आप पाया दूजा खेल कर देख लाया सब सचो सच वरतदा जे पाप तिसे बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया जिथे माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे लय समाए जियो गोपी नू गोवाली है जुदापे गोए उठाली है हुक्मी भांडे साजया तू आपे भन सवार जियो सतगुर स्यों चित लाया तेरी दूजा पाओ चुकाया निर्मल जो दिन प्राणिया चले जनु सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगे आईया मैं रात दह बड़े आईया अनमंगया दान देवना को नानक सच संभाल जियो श्री राग महला पंजवा।

चलांदी। जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की जिनी गुरमुख नाम ते आया, हर पुरख ना कभी विनसै जावे, नित देव चढ़ै सवाया, नानक संत संत हरि कहो, जप हर हर नाम सुंदी, हर राम राम मेरे बाबुला, फिर मिल तन वेल बदंदी। श्री राग महला पंजवां शांति ओंकार सतगुर प्रसाद। मन प्यारिया जीव मित्रा, गोविंद नाम संभाले, मन प्यारा जी प्यारिया जी मित्रा,

आप छोड़े परवार स्यों तिन पिछै सब जगत छटीवे। सलोक महला पहला। कुदरत करके बसिया सोए वक्त विचारे सो बंदा होए। कुदरत है कीमत नहीं पाए जा कीमत पाए तक ही न जाए। सर सरयत करे विचार बिन बुझे कैसे पावे पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद जह तिर देखा तै स्थिर मौजूद। महला पहला महला तीजा। गुर सभा एव ना पाईए ना नेड़े ना दूर। नानक सतगुर ता मिले जा मन रह अधूर। पौड़ी सपत दीप सपत सागरा नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सभना विच तू वरतदा हर सभना भाणा।

हर हर नाम जपो मन मेरे जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपो मन मेरे जित सिमरत सब किल बिख पाप लहाती। हर हर नाम जपो मन मेरे जित दालत दुख भुख सब लह जाती। हर हर नाम जपो मन मेरे मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख भाग लिखिया तुर साचै हर तित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा। सतगुर जिनी ना सेवेओ शब्द ना कीतो विचार अंतर ज्ञान ना आयो मृतक है संसार। लख चौरासी फेर पया मर जमै ओ एक वार सतगुर की सेवा सो करे जिसनो आप कराए सोए। सतगुर विच नाम निधान है करम प्राप्त होए। सच रते गुर शब्द स्यो तिन सची सदा लिव होए। नानक जिसनो मेले ना विछड़ै सहज समावै सोए। महला तीजा। सो भगौती जो भगवंत है जाने गुर प्रसादी आप पछाणै। धावत राखै एकत कर आणै।

ताज महला चौथा हर गुण पणिया हर गुण गुणिया हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत संगत हर गुण गाए जग भौ जल दोतर।

मिल सतसंग बोली हर बाणी हर हर कथा मेरे मन पाणी हर हर अमृत हर मन भावे मिल सतगुर अमृत

मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हों कोली हों कोल कमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ एक घड़ी ना मिलते ता कल युग होता हुण कद मिली।

सेव करी पल चसन बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हो कोली ज्यो कोल कमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। राग माज महला पंजवा सारुत सुहावी जित तुद संभाली सो कम सहेला जो तेरी काली सो रिदा सहेला जित हृदय तू उठा।

कहत कबीर सुनो रे लोई भरम न भूलो कोई क्या काशी क्या उकरम घर राम हृदय हर जो होई इंद्र लोक शिव लोक जैबो होछ तप कर बहर ऐबो क्या मंगो किच थिर नाही राम नाम रख मन माहिरा शोभा राज वे बड़े आई अंत न काहू संग सुहाई पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इनते कहो कवने सुख पाया कहत कबीर अवरणी कामा मरे मन धन राम को नामा राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम बिन सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई राव बनता सुत देह ग्रह संपद सुखदाई इन में कछ नाहे तेरो काल अवध्याई अजामल गज गणका पतत कर्म कीने तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने कुकर सुकर जोन भरमै तव लाज न आई राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई तज भरम करम बिद निखेद राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर सनेही तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई उपर मंड पिछाए मारकंडे ते को अधकाई जिन त्रैण तू धर मूड बुलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करता हों बिन सजाए झूठी देही राव मेरी मेरी कैरों करते दर जोधन से भाई बारह जोधन छत्र चले था देही गिरजन खाई सर्ब सुने की लंका होती रावण से अधकाई कहाँ पे उधर बांधे हाथे गिन में पही पुराई दरबासा सो करत टगौरी जाद वे फल पाए कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुण गाए दास बैरागण मोहे बस कीनी पंचो का मिट नाव सत्र दय भरे अमृत सर बिख को मार कढ़ावो।

पवन सगलारे नाम तेरो धागा नाम फूल माला भारे उठारे सगल जुठारे तेरो किया तुझे क्यार भो नाम तेरा तुही चवर टोलारे दस अठा अठ सठे चारे खाणी है वर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे तनासरी बाणी भगतां की त्रिलोचना एको ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण निंद सकाए भूली गावारी दो किरत सो किरत थारो करमरी राव संकत संकरा मस्तक बस्ता सुर श्री स्नान रे कुल जन्म दे मिलो सारंग पान रे कर्म कर कलंका मठी श्री विश्वास का दीप स्वामी तां चेरे सुवारथी पंखी राय गरुड़ तांचे बादवा कर्म कारण पिंगलारी अनक पाद कर तात्रै पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ परमताल है ना पार दी कर्म कर कपा कपाल मठी श्री अमरदास सियंत लक्ष्मी कलतर शिखर सुना।

सुनाभो गुर मिले है प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधो प्राणा मेरे मंतन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया कर हो गुर मिल हो पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता हर के रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मिल हो गुरु नानक नाम सुख होई राम। जैत श्री महल्ला चौथा। हर हर हर हर नाम जपाहा गुरमुख नाम सदा लैलाहा। हर हर हर हर भगत दृढ़ाभो हर हर नाम उमा राम। हर हर नाम दयाल स्त्याहा हर के रंग सदा गुणगाहा। हर हर हर जस घूमन पाभो मिल सत संगत उमाहा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा सुन हर कथा नाम लैलाहा। हर हर कृपा तहार गुर मिल हो गुर मिल है हर उमाहा राम। हर कीरत जस अगम अथाहा खिन खिन राम नाम गावाहा। मैं को तहार कृपा मिली है गुरदाते हर नानक भगतु उमाहा राम। जय श्री महल्ला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा मन राम नाम पीना लैलाहा। खिन खिन भगत करहे दिन राती गुरमत भगत उमाहा राम। हर हर गुण गोविंद जपाहा मन तन जीत शब्द लैलाहा। गुरमत पंच दूत बस आवहै मन तन हर उमाहा राम। नाम रतन हर नाम जपाहा हर गुण गाए सदा लैलाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो हर हर नाम उमाहा राम। जप जगदीश जपो मन महा हर हर जगन्नाथ जगलाहा। तन तन बड़े ठाकुर प्रभ मेरे जप नानक

0: सखी मिलहो मिल गुण गावहा गुरमुखो
1: राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माँ

जल थल पूर सोए जल थल मैयल पूर रहा सर्वदाता प्रभ धनी गोपाल गोबिंद अंत नाई बेअंत गुण ता के क्या गणी भज सरन स्वामी सुखे गामी तिस बिना आन नाहे कोए बिनवंत नानक दया धारो तिस प्राप्त

जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी नव खंडन को राज कुमावे अंत चले गोहारी गुण निदान गुण तिन ही गाय जाको कृपा धारी सो सुखिया धन्य उस जन्मा।

रे मन दय दिस तायो माया मगन सुवाद लोभ मोयो तिन प्रभ आप भुलाए राम हर कथा हर जस साध संगत स्यो एक मोत नायो मन लायो बिगस्यो पीख रंग कसुंभ को पर ग्रह जोहन जायो चरण कमल स्यों भाओ न कीनो नय सतपुरख मन

मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाए हमारी राम। अवरना सूजे दूजी ठार आर परे तो द्वारी, लेखा छोड़िया लेखा छूटे अम निर्गुण लेओ उबारी।

अनक छिदर बोहत ते छुटकात थाम न जाही करे जिसका बोहत तिस अरादे खोटे सांग करे गली सैली उठावत चाहे ओए उहां ही है तरह जोर सकत नानक किस नाही प्रव राखो शरण परे टोडी महला पंजवां हर के चरण कवल।

अनुरूप मोरो काछ ना बिचारियो। प्रेम गयो मैं हर रंग पीना, देखियो लालन पाठ बीज खोए आनंद, चिता हरखे पति न तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक।

अपने भगत को पूर्ण दान राग। खूब परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुगड़ सुजान। कूट राज नाम धन मेरा अमृत दृष्ट धारो प्रभ मान। आठ पैर रसना गुण गावे जस पूर अगावे सम्रथ कान। तेरी शरण जीअन के दाते सदा सदा नानक कुरबान। टोडी महला पंजवा

रांडी को ब्राह्मण के कर रांडी आछे रांडी सांडी हांडी को बाणिए के कर ही गया सै भैंस माथे सिंह को देवल मदे सिंह आछे लीग सिंह हिंग को तेली के कर तेल आछे जंगल मदे बेल को माली के कर तेल आछे केल बेल तेल को संता मदे गोविंद आछे।

करोड़ 33 अध्यायो नहीं जान्यो हार मर महाम सोर नार गण गण धार बजा सुगावे सब गावत जीत उपाम नानक कृपा करी हर जन को ते संत पले हर राम बैरागड़ी मल बैराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर कीनो गुर सतगुर नाम दिवायो रहाओ ते जन को मन तन सब देवो जन हर हर नाम सुनायो तन माया सांपै तस देवो जन हर मीत मलायो खिन कंचन कृपा करी जगदीसर तब हर हर हर जस गायो खिन कंचन कृपा कीनी जगदीसर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर भेटै स्वामी दुखों में रोग गवायो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावै जो कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावै रहो जो कुछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावै हर आपे आपे ही मत देवै स्वामी देवै स्वामी हर आपे बोल बुलावै हर आपे पंच तत्व विस्तारा वे धातु पंच आप पावै जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे चगड़ चुकावै बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम नुस्तारा कोट कुटंतर के पाप सब खूवै हर पव जल पार उतारा रहाओ काया नगर वस्त हर स्वामी हर निरफो निर्वैर निरंकारा हर नेक्ट वस्त कछु नदर न आवै हर लादा गुर विचारा हर आपे सौ सराफ रतन हीरा हर आपे किया पसारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहांजे सो सौ सच्चा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जाप मन हर निरंजन रंकारा सदा सदा त्याइये सुखदाता ताका अंत न पारा वारा रहाओ अगन कटुंब मह उधर लिव लागा हर आखे उधर मजहारा सो ऐसा हर सेव मेरे मन हर अंत छुड़ावन हारा।

0: कौन जाने चलत तेरे अंधेरे में दीप, खुदाए खसम खलक जहान अल्लाह मेहरबान खुदाए। दिन सरैन जो तुझे अरादा है सो क्यों दोजक जाए, अजला अजराहील यार बंदे जिस तेरा आधार, गुने उसके सफल आपू तेरे जन वेखन दीदार। दुनिया चीज फिलहाल सगला सत सुख तेरा नाव, गुरमिल नानक पूजिया सदा एक से गाओ तलंग महला पंजमा। मीरा दाना दिल सोच महबते मन तन वसे सच साहेब बंदी मोच राओ। दीद ने दीदार साहेब कशु नाही इसका मोल, पाक परवरदिगार तू खुदाए कसम वडाया तोल। दस्तगिरी दे दलावर तू ही एक, करतार कुदरत करण खालक नानक तेरी टेक। तलंग महला पहला घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिन किया तिन वेखिया क्या कहिए रे भाई, आपे जाने करे आप जिन वाड़ी है लाई। राय साहब प्राय का
1: हाथ पछोड़ सिर तुण जबरण बिहानी, पछोताब ना मिले जब चुकाएगी सारी, ता फिर सारा रावी जब आवेगी वारी। कंत लिया सुहागणी मैं ते वधवी हो, से गुण मुझे ना आवनी क्या जी दोस तरे हो। जिन्ने सखी सौ राव्या तिन पूछाओगी जाए, पायल गो बेनती करो लेओगी पंथ बताए। हुक्म पछाणे नानिका पहुचन दिल लावे, गुण कामण कामण करे तो प्यारे को पावे। जो दिल मिलिया सो मिल रहया, मिलिया कहिए रे सोई। जो जे बो तेरा लोचिए बाती मिल न होई, तात मिले फिन ताज को लिव लिवे को तावे। गुर प्रसादी जानिए तो अन्न पौ पावे, पाना वाड़ी होए कार खर सार न जाने। रसिया होवे मुसका तब फूल बछाने, अप्यो पीवे जो नानका प्रम प्रम समावे। सहजे सहजे मिल रहे अमरा पद पावे, तिलंग महला चौथार क्या कथा कहानिया गुरमीत सुनाइया। बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइया, आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ।

की फतेह। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद अमोक सिंह हुणा दा जिन्हां ने सानू शब्द सरवण कराया। राखा एक हमारा स्वामी। सो हुण मेरी बेनती आ हरलिव कौर, गुरसहज कौर, महक कौर, अरजोई कौर, सिमरजोत कौर नू वो प्लीज स्टेज दे उपर आउण ते जिहड़ा अगला शब्द आ ओह सरवण कराउण। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा राम गुसैया जी के जीवना। सो इहदे तों बाद इस शब्द तों बाद अगले जिहड़ा शब्द होगा शहबाज सिंह ते जसवंत सिंह ओह संगतां दे सन्मुख होणगे। ते उहदे तों बाद एकमप्रीत हरनूर सिंह, जुगाद सिंह, प्रभनूर सिंह ते उहदे तों बाद हरनूर सिंह दे शब्द तों बाद सोदर दे जिहड़ा पाठ आ ओह होएगा। सो आओ सारे जाने सुनते हैं गुरसहज कौर, हरलिव कौर, महक कौर, अरजोई कौर, सिमरजोत कौर वालों मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। सो ये जिहड़ा कैंप आ खास तौर दे उत्ते इहदे विच कुछ चीज़ा जिहड़ियां ओह याद रखने वाली के जिन्ने भी पेरेंट वॉलंटियर सी जां बच्चे वॉलंटियर सी भावें कि ओह तकरीबन तीन हफ्ते का समा जिहड़ा उन्हां दे जिहड़ा इत्थे लगातार मेहनत करके बच्चियां दे नाल ते बच्चियां दी जिस तरीके दे नाल हैल्प कीती ते खास तौर दे उत्ते साडे जिहड़े भाजी गुरमीत सिंह लांगरी जिहड़े गुरद्वारा साहिब दे आ उन्हां ने भी बिल्कुल छोटे समय दे थोड़े समय दे विच जदों उन्हां नूं कुछ कहिंदे सी कि भाई साहब आह बच्चियां दे लई बनाउणा कदे भी उन्हां त्योड़ी नहीं पाई मत्थे वट नहीं पाया ते उन्हां जिहड़ी उसे वेले चीज़ जिहड़ी आ उह बच्चियां दे बना के सन्मुख पेश कीती। सो सारे पेरेंट्स दा सारे वॉलंटियर्स दा लांगरी साहब दा ते सारे वड्डे बच्चियां दा जिन्हां लीडरशिप अपनी दिखाई ते इस कैंप नूं बड़ा बाखूबी चलाया। सो हुण असीं सुणदे आ मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा ते तबले उपर जिहड़ी सेवा भाई जसवंत सिंह साडा बहुत ही होनहार बच्चा ओह लगातार सेवा निभा रहा। सो एक बेनती होर आ कि चौर साहब दे लई कोई भी बच्चा ना उठे होर ते कृपा करके तुसीं इत्थे ही बैठे रहो। सो आओ सरवण करदे आ इह शब्द वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: एक मिनट एक
1: मिनट
0: ओके। एक खास तौर के उत्ते बेनती है कि जो शब्द खत्म होंगे नाल दी नाल ही दूसरा जिहड़ा जथा वा वह प्लीज़ तैयार रहे। तो हुण असी शबाज सिंह हुणा कोलो ते जसमन सिंह हुणी तबले उपर जौतो प्रेम खेलन कचाओ। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।

0: जनन पिता लोक संपन्ता कोई न किसकी तरिया
1: जैसे रजक समाय उठाकर काहे मन पाव करिया
0: उड़े उड़ावे सह को साथ इस पाछे पचड़े शरिया
1: तिन कमन खलावे कमन चिगावे मन में सिमरन करिया
0: सामने दान दस अष्ट सिद्धान ठाकुर कल तर तरिया
1: जन नानक बल सदबल जाइया तेरा अंत ना पारा वरिया
0: रागा समला चौथा सो पुरख कोंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर अगमा